0: your song.
1: Only on City FM 89. It's EDM. City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: Trending today.
5: Rapper Kanye West has released a deluxe version of his hit album Bully. The extended cut features a slew of new tracks and artist features and is up on all platforms.
6: City FM 89.
7: Hire kar naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
8: ek duni do do duni char sahi intikhab ke inaamat 2500
9: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम
10: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
7: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
3: City FM 89.
11: We're playing your song.
12: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: सेक्टर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
2: शराय तो जवाबित लागू है।
3: सिटी FM 89।
4: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
5: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
6: A new era begins.
7: You're listening to City FM 89.
8: We're playing your song.
9: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: Ek duni do do duni char sahi intikhab ke inamat 2500.
7: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
8: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
9: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
10: पूरा हफ्ता राब्ता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ। अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8 GB डेटा, 4000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में। बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ। आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर। शरायतो जवाबित लागू हैं।
3: City FM 89.
11: Sunlight exposure within 30 minutes of waking helps to regulate your sleep-wake cycle.
4: Brought to you by Dettol.
5: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Hire Kannaya, no frost IoT refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: Jazz Cash ke saath pao 1 crore jeetne ka shandar mauka. April aur May miss ho gaya? To tension kaisi? Mauka abhi bhi baki hai. अपने जैज कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
6: शराय तो जवाबित लागू है।
4: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर। इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: सिटी एफएम 89.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 a.m.
3: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Rapper Kanye West has released a deluxe version of his hit album Bully. The extended cut features a slew of new tracks and artist features and is up on all platforms.
3: You're listening to City FM 89.
7: Hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
8: ek duni do do duni char sahi intikhab ke inaamat 2500
9: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाएं फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम
10: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
9: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी मौका अभी भी बाकी है अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना
10: शराइत जवाबित लागू है
7: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: सिटी एफएम 89 वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
1: यू आर लिसनिंग टू द ब्रेकफास्ट शो विद शर्मीन
11: Fight, thrill of the rage. Crushing my opponents, foot up off the break. Cleaning all the plates, finna make bang. Finna make history, turn this pain to energy.

0: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
2: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein, aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
3: Ek duni do do duni chaar, sahi intikhab ke inamat 2500.
4: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
5: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 PM.
3: City FM 89.
4: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।
6: Follow us at City FM 89 on Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo, on SoundCloud. Expose yourself to a world of music. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
7: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m., only on City FM 89.
8: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
9: Non-Stop Hits.
10: No talk.
11: Just you
10: and the music.
11: Back to back
10: starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 4 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Rapper Kanye West has released a deluxe version of his hit album Bully. The extended cut features a slew of new tracks and artist features and is up on all platforms.
5: City FM 89.
7: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज
1: सिटी 89 यू आर लिसनिंग टू
8: नॉनस्टॉप हिट्स
9: न्यू टॉक न्यू टॉक न्यू टॉक न्यू टॉक Just you, and the music.
10: Back to back starts now.
11: Deep.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
5: You're listening to City FM 89.
6: Trending today.
7: Rapper Kanye West has released a deluxe version of his hit album Bully. The extended cut features a slew of new tracks and artist features and is up on all platforms.
8: City FM 89.
9: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
10: Ek duni do do duni char sahi intikhab ke inaamat 2500.
11: Agar aap hain drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le. Platinum status maintain kare aur pay fair earnings ke saath 2500 se zyada inaamat.
10: Duni do do duni char.
12: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
13: MCB One करंट अकाउंट हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ. तो आज ही MCB One करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं. MCB बैंक फॉर लाइफ.
14: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर, जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स, रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर, क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
15: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है. अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना.
12: शराय तो जवाबित लागू है.
9: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: City FM 89.
1: You're listening to
16: The Rush Hour with ABD.
17: Welcome back to The Rush Hour. This is the last link of us discussing the FIFA World Cup. So if you're not into this, I'm so sorry. We're just wrapping this up. Okay, so you're talking about how Ronaldo and Messi will not be meeting because it is very unlikely that Portugal will reach the final. And that is also granted if Argentina reaches the final. That's the only way they'll meet. Well, Portugal started to a 0-0 opening game, draw against DR Congo before beating Uzbekistan 4-0 ahead of another scoreless tie. Now, speaking of Uzbekistan, it lost all three games it played and had a -9 goal differential. I'm so sorry, I don't mean to laugh, but that's sad, man. Like, imagine going for the World Cup and this happens. It's one of the worst teams in the tournament, unfortunately. Also, after 17 days of group stage drama, every match is now win or go home. Canada was the first team to reach the round of 16, and it is going to be facing the winner of tonight's late match between Morocco and Netherlands. So make sure you catch that match just to see who Canada is going to be facing. That is all for the FIFA 2026 World Cup, unpacking. I hope you enjoyed it, and I cannot wait to see who proceeds to the finals. I'm going to send you to listen to Whatever Works by Kanye West.

0: आए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
3: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
4: पूरा हफ्ता राबता बरकरार, जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8 GB डेटा, 4000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में। बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ, आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर। शरायतो जवाबित लागू हैं।
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: सिटी FM 89, वी प्लेइंग योर सॉन्ग।
6: यू आर लिसनिंग टू
7: द रश आवर विद ABD।
8: Welcome back to The Rasha. I'm your host, ABD, and I want to discuss some binge-worthy content for you guys. So this is a deep dive edition. If you are into deep dives, you like to get into the nitty-gritty of stuff, especially the future of everything, this is for you. I cannot stress this enough. So number one, we have Cleo Abram. She's on YouTube. It's very smart, optimistic, and very, very, very easily watchable deep dives video, deep dive videos into the future of tech. Now, why her in particular am I suggesting? It's she explains everything from nuclear fusion, something very complex, to wearable AI in under 15 minutes. She simplifies it to a level you and I understand, and it is seamless. It does not feel like derogatory, like she's talking down. It's just very engaging, for lack of a better word. It essentially feels like a TED Talk meets TikTok. So it's quick, it's fun, it's snappy, you're locked in and that's it. Also, we have Veritasium on YouTube, science storytelling at its absolute best. And why should you follow this? Derek takes complex physics, psychology, engineering ideas and turns them into jaw-dropping experiments that make you feel smarter. And I think this is very good for someone like me in particular. I really learn well with experiments, like real-world applications. So yes, I can understand something in theory, but how is it implemented? And I think this is why I really like Veritasium. I have a few more, but before we head on to those, I'm going to send you to listen to Afrojack and Sia's Awake Tonight.

0: your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 PM.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: You're listening to City FM 89.
6: Ek duni do do duni char sahi intikhab ke inamat 2500.
7: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
8: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
9: Pediasure से आइलीन को मिलता है complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth ताकि ये ग्रो करे 50% faster.
10: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT technology food expiry notification के साथ साथ आपको दे mobile app से complete control. No Frost, no worries.
2: CFM 89, we're playing the song.
1: You're listening to

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
5: Trending today.
6: Rapper Kanye West has released a deluxe version of his hit album Bully. The extended cut features a slew of new tracks and artist features and is up on all platforms.
4: City FM 89.
7: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
8: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
9: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
10: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क। इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज।
7: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
8: शराय तो जवाबित लागू है।
9: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
4: यू आर लिसनिंग टू सिटी FM 89।
2: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
1: यू आर लिसनिंग टू

0: 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
1: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
0: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
1: शराय तो जवाबित लागू है।
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: City FM 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
4: यू आर लिसनिंग टू

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 p.m.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम
6: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
7: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
8: क्या आप जानते हैं की उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज
9: पूरा हफ्ता राब्ता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8 GB डेटा 4000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर शरायतो जवाबित लागू हैं
7: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. No Frost, No Worries.
10: City FM 89. We're playing your song.
11: You're listening to.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients, including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
5: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
6: शराइत और ज़वाबित लागू है।
7: We're playing your song.
1: You're listening to

0: the perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
3: शराइत ज़वाबित लागू है।
4: सिटी एफएम 89।
5: Attention, the standard commute has been decommissioned.
6: Introducing a system override for your ears.
7: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
8: Join ABD as he takes over the streets.
7: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
6: your evenings just got an upgrade.
8: The rush hour with ABD.
7: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
6: Tune in or get left behind.
0: Don't adjust your dial.
1: This is
0: City FM 89. You're listening to
1: Future Sounds.
0: Future Songs.
1: Vibe with us, your music.
7: Discovery for the latest jams and hidden gems. No matter what, you got

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 PM.
3: You're listening to City FM 89.
4: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।
3: You are listening to City FM 89.
2: We are playing your song.
6: That text, phone call, and notification can wait. Avoid using your phone while driving. Doing so not only endangers yourself, but also endangers other drivers and pedestrians and puts you at a risk of getting into an accident. Before heading out, connect your mobile device to your car's Bluetooth infotainment system or use earphones or speakerphone so you don't have to look at your screen. Only answer emergency calls and emergency texts after you've parked your car to the side of the road and turned your hazards on. Keep yourself and those around you safe. Stay aware with City FM 89.
1: City FM 89. You're listening to
7: Future Sounds.
8: Future Sounds.

0: Your road rage.
1: City FM 89.
2: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू है।
1: You're listening to
4: Future Sounds.
5: Future Sounds.
4: Discover 5 new tracks, fresh drops, and the artists you need on your playlist. Stay ahead of the vibe.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 10:30 p.m.
4: You're listening to City FM 89.
5: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
6: शराय तो जवाबित लागू है।
7: City FM 89.
8: You know the city, but do you know what's actually happening in it? From hidden hotspots to the latest trends and go-to events everyone is talking about, and a few that they aren't, I'm Anika, and I'm going behind the scenes to find the heartbeat of your streets. Whether you're looking for your next weekend plan or just want to stay in the loop, I've got you covered. Come and join me on What's Happening in Your City.
9: Tune in to Ticketwala Presents What's Happening in Your City with Anika every Friday 4 p.m. only on City FM 89.